0: Ladies and gentlemen. Oh, forget it.
1: It's Bollywood.
2: मुझे खींच रही अनजानी दूर, बस तेरी ओर, बस तेरी।

कहती है कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग